सुख शांति नहीं। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल कृष्ण जय।

0: दुष्कृतं बिलन् श्रीपति
1: साईराम रेडियो साई ब्रिंग्स यू नाउ अ डिवाइन डिस्कोर्स डिलीवर्ड बाय भगवान बाबा ऑन 2 अप्रैल 2003 इन बृंदा